0: Pakistan. This is FM 100. FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
1: FM247365
2: Let's celebrate
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
1: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 247 365

0: It's 8 a.m.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: This program is brought to you by
2: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, just simile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
0: And
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
4: sweep be clean, kare tezi se sakh daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
5: HBL free makan, jahan khwab, wahan HBL.
0: And

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: This program is brought to you by
2: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost, No Worries
0: And
3: Phoenix लगा और भूल जा Phoenix लगा और भूल जा
0: And
4: Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
0: And
5: HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries.
0: And
2: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा.
0: And
3: Sweepy Clean, करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
0: And
4: HBL Freedom Account, जहां खाब, वहां HBL.
0: And

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा, तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने आप लाखों से तीन बार मौत देखे।
5: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमा का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100
8: facebook.com/FM247365 FM 247365।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
10: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
10: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: like us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365. Let's celebrate
0: 31 years.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving No Frost No Worries
0: and
2: Phoenix लगा और भूल जा Phoenix लगा और भूल जा
0: And
3: Sweep Be Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
0: And
4: HBL Freedom Account जहां खाब वहां HBL

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: This program is brought to you by
2: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
0: And
3: Phoenix लगा और भूल जा Phoenix लगा और भूल जा
0: And
4: Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
0: And HBL Freedom Account जहां खाब वहां HBL

Kamekan.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: किसने कहा था?

0: 247-365. FM 247-365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: location for maximum music.
1: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Vikas Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखिए, अगर आपके जहर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। देखिए, आपकी शनाख्ती तहफ्फुज़ और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम। पीटीए।

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको और मेरा नाम है नदीम अख्तर। हैप्पी आवर्स में मैं हूं आपके साथ, आपका हमारा साथ है एक से तीन तक। और आज हमारे साथ ग्वालियर घराने के चश्मो चराग जनाब मोहतरम करम अब्बास खान साहब और उनके सपूत जो इस चीज को आगे लेकर चल रहे हैं, अली अहमद खान साहब। ये दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारी खुशनसीबी है जनाब। और अभी आपने थोड़ा सा सुना भी था करम भाई ने कैसे वो आकार किया। जी करम भाई, अब एक सवाल मैं बेसिकली करना चाह रहा था आपसे, क्योंकि मैं उस सवाल से भी पहले करम अब्बास खान साहब का एक बहुत ही जबरदस्त सा ट्रैक आपको सुनाऊंगा, क्योंकि सवाल कुछ ऐसा अजीब सा है कि इस ट्रैक को सुनने के बाद आप लोग जो सुनने वाले हैं उनको भी मेरे सवाल का मतलब समझ में आएगा। तो अगर आपकी इजाजत हो तो आपका एक ट्रैक पहले चला दूं।
1: चला दीजिए।
0: चले जी, सुनते हैं करम अब्बास भाई का एक बहुत ही जबरदस्त सा ट्रैक है, कैसे गुजारूं इसका टाइटल है। जरूर सुन सकते हैं आप यूट्यूब पर भी जाकर, लेकिन फिलहाल हमारे शो में सुनिए। एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक हैंगे सुनियो। और आपने खूबसूरत सा ट्रैक सुना, और ये कौन से राग में था?
1: ये मिश्रक हमाज है। अच्छा। और शुद्ध शक्ल मिश्रक हमाज की जो है उसको हमने क्या किया कि लाइट कर दिया, गीत नुमा कर दिया। उसमें उस्ताद नफीस खान जो सितार वाले हैं उनके साथ संगत कर रहे हैं, तो उनकी मेहरबानी। और दूसरा ये किया कि वक्त के साथ ना आपको बदलना पड़ता है खुद को। अगर शुद्ध शक्ल क्लासिकल म्यूजिक आप सुने तो वो मेरे ख्याल है कि एक ऐसे बंदे को जिसको म्यूजिक का नहीं पता उसको समझ में नहीं आता। तो ये तकरीबन 100 साल से ही उसके बाद से ही ये देखें कि बड़े गुलाम अली खान साहब के जमाने में भी सैगल साहब थे, उनका एक बंगला बने नियारा वो भी लोग सुनते थे। तो मतलब तब्दीली आना शुरू हुई थी, और वो आते आते फिर वो गजल में, गजल से ठुमरी से गजल, गजल की तरफ फूक। उस्ताद तो फैनाजी साहब बेहतरीन। हर बंदे ने फिर क्लासिकल का इस्तेमाल जो किया वो भी थोड़ा सा लाइट अंदाज में किया कि किस तरह समझाया जाए, सुनाया जाए।
0: अच्छा, ये तो आपने बात सही है। मैं आप लोगों को जो सवाल है उसकी जानेब आऊं, और ये आपको खूबसूरत सा मैं गीत का, जबकि ये है ठुमरी ही, उसको जो है गीत के अंदाज में बेहतरीन तरीके से आप लोगों की समातों तक पहुंचाया करम अब्बास खान साहब ने। तो बात यह है कि सिर्फ हम सुनने के लिए हद तक जहां तक जाए ना, तो हम अगर आपको बोलेंगे जी मैं आपको सुनाता हूं ठुमरी, तो बहुत सारे लोग जो है कहेंगे यार कोई गाना सुन लेते हैं
1: बड़ी क्लासिक।
0: लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना जी आप मेरा बहुत जबरदस्त ट्रैक है वो आप सुनिए, तो फौरन सब कहेंगे अरे यार सुनते हैं कैसा ट्रैक है।
1: ऐसे ही
0: है ना,
1: बिल्कुल सही।
0: हालांकि चीज वही सुना रहे हैं आप। तो पता नहीं क्लासिकल म्यूजिक को क्यों लोगों ने जो है बहुत मुश्किल समझ लिया कि हमें समझ में नहीं आएगा क्लासिकल म्यूजिक, समझ में नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है। और आप अगर बहुत सारे ट्रैक्स ऐसे सुने कि जिसमें बड़े ही राग और मुरखियां चल रही हैं वो लोग बड़े पसंद करते हैं, लेकिन जब आप क्लासिकल म्यूजिक के रागों का नाम लेकर जिक्र करते हैं तो लोग जो हैं वो थोड़ा सा कतराने लगते हैं। बट मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जितने भी गाने हम सुनते हैं ना, वन टू ऑल
1: जो हमारे रागों में ही है,
0: जितने भी गाने सुनते हैं वो रागों में ही है, उसके बगैर गाना गा ही नहीं सकते यार।
1: ऐसे ही
0: है ना जनाब?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: तो सवाल इससे पहले कि मैं दूसरा आपसे करूं, तो क्यों ना मैं अब जो है वो अली साहब के साथ, अली अहमद साहब की जानिब बढ़ता हूं और उनसे पूछता हूं कि अली आपको, आप यंग हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में म्यूजिक अपनी शक्ल बदल चुका है, लेकिन आपका ताल्लुक क्योंकि एक घराने से है, वालिद साहब को देखते हैं आप, दादा को देखते हैं, परदादा को देखते हैं, तो क्या आपके जहन में कभी ये नहीं आया कि यार ये इसी तरफ जाऊं या मैं कुछ हिप हॉप की तरफ चला जाऊं? आपने इसी को ही चुना अपने जो खानदान की जो एक परंपरा जिसको कहते हैं उसको लेकर, आपने कैसे, मुझे हैरत ये हो रही है आप यंग है माशाल्लाह, और यंगस्टर्स का दिमाग घूमता कि नहीं यार भाई मैं ये चीज को, बस ये बहुत हो गया बाबा, बस पुराना हो गया मैं तो, अब जरा ये चलाऊं, लेकिन आप माशाल्लाह से वही सिलसिला कर रहे हैं, तो कोई इस तरह की सवाल जहन में आया आपके?
2: जी दीम अंकल बिल्कुल आता है कभी कभार, तो ज्यादा ध्यान फिर भी हमारा क्लासिकल की तरफ ही होता है, क्लासिकल मेन बुनियाद है।
0: अच्छा
2: जी, क्लासिकल की छोड़
0: आपका, उसके बावजूद आपने कहा कि नहीं मैं क्लासिकल ही सीखूंगा,
2: क्लासिकल छोड़ देंगे फिर ना आगे के रहेंगे ना पीछे के रहेंगे, क्लासिकल तो मेन जड़ है हमारी।
0: इतने यंग हो माशाल्लाह से, तो ये राग शाग सीखने में मुश्किल नहीं हुई कभी? राग वाग सीख रहे हैं आप, पापा सिखाते हैं आपको?
2: जी राग तो हम छोटे होते ही सुनते थे पापा से, दादा से, पर दादा से, सबके रिकॉर्डिंग उस्ताद उमीद अली खान साहब की, जो हमारे दादा ही थे, और उस्ताद फतेह अली खान हैदराबादी, उस्ताद अहमद अली खान मेरे जो दादा हैं,
0: जी जी जी,
2: तो उनको सुन सुन के हमें यही होता था कि बस क्लासिकल गाना है और यही गाना है, यही बुजुर्गों की रीत है, ये करते रहना है, भले जो मर्जी क्लासिकल के अलावा भी हम गाएं अपना।
0: अच्छा मेरा सवाल ये है, चले ठीक है, कि आपको शौक है कि आप कुछ हिप हॉप कुछ डिफरेंट करने का कुछ शौक है, या इसी चीज को आगे, देखिए इसके सवाल के बाद फिर मैं एक मेरे जहन में भी जवाब है वो भी दूंगा।
2: जी जी, शौक तो है लेकिन कंपोजिशन बनाई भी हुई है मैंने अपनी।
0: अरे वाह, अच्छा,
2: तो हाँ जी कंपोजिशन बनाई है, रिकॉर्ड कर दी है।
0: वाह वाह जबरदस्त, मैं बस आपको असल में ला यहाँ पर रहा था कि आपका दिमाग जो है वो कहाँ जा रहा है, कंपोजिशन आपकी कॉम्पोजिशन अभी आपसे सुनेंगे हम, ठीक है, लेकिन लेकिन अभी फिलहाल आपसे बात करेंगे क्योंकि एक मिनट में ब्रेक आने वाला है, तो मैं नहीं चाह रहा कि उसको बीच में आपकी आपको सुनते हुए जो मैं बोलूं सॉरी क्योंकि ब्रेक पर जाना बड़ा जरूरी होता है। तो अच्छा, तो अपनी कॉम्पोजिशन भी बनाई है आप?
2: जी जी, कॉम्पोजिशन बनाई है और आज के हिसाब से बनाई है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: तो यही है अंकल?
0: बस यही है कॉम्पोजिशन क्लासिकल में ज्यादा। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जितने भी मेरे लिसनर्स सुन रहे हैं, कि एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बच्चा है और मुझे हैरत ये हो रही है कि ये माशाल्लाह से क्लासिकल भी गा रहे हैं, कॉम्पोजिशन भी बना ली, और आपकी कॉम्पोजिशन सुनने के लिए तो मैं तो खैर फिलहाल बेचैन हूँ कि मैं आपकी कॉम्पोजिशन भी सुनूं। और उसके साथ साथ कुछ मैसेजेस हैं वो मैं शामिल शो करना चाहूंगा, क्योंकि अभी एक मिनट में हमने ब्रेक की जाने भी जाना है, सो दैट्स वाई उन मैसेजेस की जाने। आप दोनों की इजाजत है?
1: जी जरूर।
0: महानूर आ गई हैं और महानूर कह रही हैं आपके मेहमानों को, लाला को, तमाम लोगों का नाम भी लिया है, उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम, फखर राख ले स्थले मशे स्थले मशे जी।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: आप सोच रहे होंगे ये कौन सा राग है?
1: जवाब
0: ये सलाम
1: वालेकुम सलाम
0: पश्तों में सलाम। अच्छा जी, संजू भी आ गई हैं और संजू के बहुत सारे मैसेजेस हैं, उनमें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, काबिले इत्राम मेहमान करम अब्बास को खुशामदीद कहती हूँ, जबरदस्त तारुफ करवाया, क्लासिकल म्यूजिक पर बाशऊर को पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक बाशऊर को पसंद है, माशाल्लाह। इनके साहबजादे को भी खुशामदीद, मुझे ज्यादातर क्लासिकल गाने पसंद है जबकि उनके नाम मालूम नहीं, रागेश्वरी दरबारी वाह। अब उनके बारे में आपने बताया है ना, तो उनको ये बात पता चली है। अच्छा जी, इनके और भी बहुत प्यारे से मैसेजेस हैं, उनको हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जाएंगे एक ब्रेक की जाने।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हायर कन्नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
5: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
6: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाए।
7: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
8: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
9: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
10: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: Happy Hour with Nadeem Akhtar.
1: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको हैप्पी आर्स में मैं हूं आपके साथ आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक और आज हमारे जबरदस्त गेस्ट आए हुए हैं करम अब्बास खान साहब और उनके साहबजादे अली अहमद खान साहब ग्वालियर घराने के चश्मो चराग आज यहां पर फुल टाइम बैठे हुए हैं और रोशनी फैला रहे हैं तो ब्रेक में जाने से पहले अली मैं आपसे बात कर रहा था आप इस उम्र में आकर कॉम्पोजिशन भी बना रहे हैं बड़ी अच्छी बात है लेकिन हम आपकी कॉम्पोजिशन सुनने से पहले आपसे कुछ सुनना चाहेंगे एमन या किसी भी राग में आप समझते हो कि आपकी स्पेशलिटी है भाई मैं ये राग अब गा लेता हूं जबरदस्त तो कोई राग जो ऐसा हो तो वो सुनाए
2: एमन सुनाओ आपको
1: एमन सुना दे यार
2: जी एमन सब गाते हैं लेकिन अपना अपना स्टाइल होते हैं और
1: आपका भी स्टाइल है
2: हमारे खानदान का जो स्टाइल है वही हम तो
1: हाय हाय क्या बात है जरा हो जाए फिर हो जाए
2: मेरे गा मारे

वेलकम बैक कहेंगे जनाब। और ये अभी आपको मुकम्मल भी मैं आपको सुनाऊंगा, ये मुकम्मल असल में रिकॉर्डिंग थी नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्योंकि ना क्यों ना मुकम्मल करम भाई से थोड़ा सा लाइव कर ले। करम भाई अगर हो जाए तो क्या बात है।

0: कि एज के साथ साथ आपका
1: स्किल
0: भी गिर, एज गिरने के साथ स्किल भी गिर रहा है,
1: स्किल भी गिरता है आपका। अच्छा, पर ये है फायदे इसके बहुत है कि एक कोई ऐसा शो आ गया मुझे लाइफ में कि उस दिन मेरा गला खराब था, अब शो था तो मैं उसको कैंसिल करता तो मुझे लगा कि मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा कि क्या करूं और वाकई में गला खराब, तो मैं शो में मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा, मैंने जो स्पीकर्स वाले थे मैंने कहा तुमने फुल स्पीकर का गेन जो है फुल बना दिया, अब मैं कह रहा हूं ये वतन तुम्हारा है। अच्छा, किसी को उसने बढ़ा दिया, मेरे म्यूजिशियन कह रहे आप कहां से गा रहे हैं, यहां से कभी, मैंने कहा बस बजाते रहो। इस तरह करके नदीम भाई मैंने वो एक घंटा या दो घंटे गाया, वो काम तो हो गया, पर वो मेरे म्यूजिशियन आज तक को कहते हैं कि आपकी क्या टेक्निक थी कि जहां आपका स्केल बढ़ता आपकी आवाजों में खराशियां आती, क्योंकि गला खराब हुआ।
0: अच्छा,
1: तो इतनी टेक्निक,
0: अब मैं समझा हूं कि आपकी आवाज
1: का फायदा भी है।
0: फायदा नहीं सर, ये आप की एक्सपीरियंस है,
1: तजर्बा
0: है कि आप इस चीज को इस तरीके से लेकर चले गए। कोई आम
1: जज्बात नहीं,
0: कोई आम नहीं बात। कि कोई भी मैं समझता हूं कि सिंगर होगा तो वो यही कहेगा यार जी मेरा गला खराब है, आई एम सॉरी यार मैं इशू नहीं कर सकता।
1: मतलब एक तो रियाजत भी होती, अच्छा मैंने खर्च का रियाज भी किया, अब वो भैरों का पलटा है, वो मतलब
0: सुनाए ना भैरों का पलटा।
1: सारे गम बदनी रे सनी रब मगर सानी रब मगर
0: चले। अब आप लोगों को मैं एक बड़ी जबरदस्त, हमारे करम अब्बास भाई ने मेहरी हसन साहब को ट्रिब्यूट पेश किया था, उनकी एक बहुत जबरदस्त सा गीत है, उसको आपने जो गाया है, क्या गाया है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, जरा सुनिए, फिर इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और अगले सेशन में हम जरा अली साहब से कुछ दो दो बात करेंगे।

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: This program is brought to you by
2: Hire Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
4: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाए. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फॉर्म, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.

0: वेलकम बैक करेंगे सुनो आप सबको, और हमारे साथ मौजूद हैं करम अब्बास खान साहब और उनके साहबजादे जनाब द राइजिंग स्टार जिसको कहेंगे उस्ताद अली अहमद साहब।
1: तो माशाल्लाह उस्ताद कह दिया,
0: उस्ताद
1: करे आपकी जुबान मुबारक हो
0: भाई,
1: अल्लाह करे आने वाले सालों में।
0: आपको हकीकत बताऊं, जैसा इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले गाया था ना, आम जो बहुत सारे ऐसे पॉपुलर सिंगर हैं वो इस तरह की एक मुर्गी नहीं ले सकते, तो उनके लिए आप उस्ताद हो गए। अच्छा, एक सवाल करना चाहूंगा मैं अली अहमद साहब से। अली, आप ये बताइएगा कि राग आप सीख रहे हैं
2: जी जी,
0: और जाहिर घराना है और इस घराने में ये चश्मो चराग हैं आप, तो ये जो राग सीख रहे हैं बहुत सारे राग हैं, ठीक है ना, आप लोग एमन भी है और दूसरे भी, कुछ राग ऐसे होते हैं जिस पर बहुत सारे गाने बनते हैं, जैसे एमन है, एमन
1: कमर्शियल राग है,
0: कमर्शियल राग है, उन पर
1: भैरवी,
0: हाँ भैरवी,
1: रगेश्री, रगेश्री, पहाड़ी।
0: एक मिनट, सवाल मुकम्मल होने दें। लेकिन कुछ राग ऐसे भी होंगे जिस जो इतने मुश्किल होंगे जिस पर कोई गीत गजल नहीं बन पाती होगी, ऐसा है ना?
2: बिल्कुल।
0: तो इन चीजों को आप किस तरह देखते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्या आप आपकी राय क्या है? ये
2: जी, मेरी राय ये है कि कुछ राग ऐसे होते हैं जैसे एमन है, दरबारी है, और या रगेश्री है, बगेश्री है, तिलक मोद है, मत कल्याण है, मेघ है, ये राग हैं जो आप 5-10 दफा सुन के गा सकते हैं।
0: अच्छा,
2: अगर आप अगर
0: इसकी प्रैक्टिस कर लें 5-10 दफा,
2: मतलब रियाज अगर आपका 2-3 साल का रियाज है,
1: तो ये राग गा लेंगे,
2: तो ये राग आप गा लेंगे। अब कुछ राग ऐसे हैं कि जैसे कि बठियार है।
0: अच्छा,
1: थोड़ा सुनाओ, जरा
0: सुनाए ना आप, जरा सुनाए।
2: ये राग अंकल वो है कि जो इंसान को 5 मिनट के बाद वक्त पढ़ना शुरू हो जाता है कि मैं क्या कैसे खत्म करूं,
1: खत्म कैसे करूं,
0: जरा सुनाए, कुछ सुनाए।

0: जनाब और 2:32 हो चुके हैं और फौरन से पेशतर पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन एस सोनी हूं और हैप्पी आवर्स में मैं हूं आपके साथ। आज हमारे साथ एक बहुत जबरदस्त गेस्ट आए हुए हैं, ग्वालियर घराने के चश्मो चराग हमारे साथ मौजूद हैं करम अब्बास खान साहब और इस उनसे अगली पीढ़ी जो है अली अहमद खान साहब, ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। और जो लोग बिल्कुल आगाज से ही शो सुन रहे हैं, म्यूजिक लवर्स जो हैं वो जरूर महजूज हो रहे होंगे आज के प्रोग्राम से। मैसेजेस आप कर सकते हैं KHI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड करेंगे 3636 पर। और संजू के कुछ मैसेजेस हैं करम भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो
1: जी जरूर
0: मैं कुछ मैसेजेस शामिल कर लूं शो में। मुझे करम साहब का सबसे पसंदीदा गीत मेरे नाम कर दें।
1: आए हाय,
0: आपका जो सबसे पसंदीदा गीत होगा ना वो आपने संजू साहिबा के नाम करना है।
1: okay.
0: अच्छा जी, साजन जो मैं चाहती हूँ वाला क्या कहने हैं और बज़्मे कह रही जुमेरात के बज़्मे शायरी में ये आप शामिल कीजिएगा। बिल्कुल आपकी ये भाई फैन है जबरदस्त,
1: बहुत शुक्रिया।
0: और कैसे गुजारूं सारे रहना, क्या कहने हैं, बहुत आला क्या बात है, अली शहजादे एमन राग इसे कहते हैं, वाह माशाल्लाह से। वो कह पूछ रही है कि शफकत अमानत अली से इनका कोई रिश्ता है?
1: जी बिल्कुल है,
0: बताइए।
1: हम जुल्फ हैं वो।
0: अरे वाह, वाकई मुझे भी नहीं पता।
1: तो उनके अब्बा भी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी काफी मतलब
0: शफकत भाई आपके हमजुल्फ हैं?
1: जी
0: अच्छा अच्छा,
1: मेरी वाइफ और उनकी वाइफ सगी बहन है।
0: सगी बहने हैं, ये पता चल गया संजू आपको। अच्छा जी, और परंपरा एक संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसकी बुनियादी मायने रिवायत रसम और रिवाज है, ये आपने समझ लिया, क्या बात है जनाब आपकी। और नजर ना लगे माशाल्लाह से बहुत आला प्रोग्राम है, वाओ दिल में तूफान छुपाए सारे। मैं पुराने मैसेजेस असल में साथ में शामिल कर रहा हूँ, माजरत चाहूंगा आप लोगों से क्योंकि करम भाई आए हुए हैं तो बस दिल कर रहे हैं इनसे बातें करता रहूं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों की शमूलियत भी है वो भी बड़ी जरूरी है। और रानी जी आ गई हैं और जबरदस्त प्रोग्राम उन्होंने कहा है, अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब भी आए हैं, उनको भी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहेगा। आज का प्रोग्राम बेहतरीन अंदाज में पेश किया जा रहा है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्क भी आ गई हैं और कहती है अस्सलाम वालेकुम शो के लिए, शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है और कह रही हैं कि कुछ गुनगुना कर सुनाइएगा जनाब, आप थोड़े से कुछ हो जाए, मैं तो अली भाई से सुनूंगा अभी। अच्छा, उजैर फारूक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उनको भी शो बहुत पसंद आ रहा है। उसके साथ साथ हमारे सोहेल खान साहब, उनका भी मैसेज आया है, सोहेल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आप लोगों की जो मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार जो है वो मैं साथ बिल्कुल शामिल शो रखूंगा और बीच में एक छोटा सा लिंक होगा जिसमें आपके तमाम जो है मैसेजेस शामिल कर लूंगा, लेकिन मैं खुद ये चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो करम भाई के साथ और अली साहब के साथ जो है वो गुजारूं। तो आप लोगों ने बुरा नहीं मनाना है, मैसेज करते रहना है, आपके मैसेज मेरे पास महफूज होंगे, जैसे मैंने संजू के अभी सारे पुराने मैसेज भी पढ़ लिए इसी तरह मैसेज पढ़ लूंगा। तो गुनगुनाने का अगर फरमाइश आई है तो मैं ये चाहूंगा। अच्छा, मुझे पता था कि गुनगुनाने की फरमाइश बेतहाशा आ रही होंगी, तो अली भाई कुछ सुना दीजिए आप
2: जी। अब मैं आपको कंपोजिशन सुनाता हूँ अपनी कंपोजिशन,
0: उसकी
2: मैं खाली स्टाइल सुनाता हूँ आपको ताकि अभी उसको रिकॉर्ड नहीं किया।
0: अच्छा,
2: तो आपकी खातिर मैं सुनाता हूँ।
0: थैंक यू वेरी मच, सुनाइए सुनाइए।
2: दर नारा

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको. मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुने. हैप्पी आर्स में मैं हूं आपके साथ. मेरे साथ आज मौजूद हैं हैप्पी आर्स में दो लेजेंड जनाब ग्वालियर घराने के दो चश्मो चराग. एक तो हैं हमारे करम अब्बास खान साहब और दूसरे उनके साहबजादे जो इस लेगेसी को लेकर आगे चल रहे हैं अली अहमद खान साहब. और जनाब सवाल मैं करना चाह रहा था भाई, वैसे ये मैंने बहुत से हमारे सुनने वाले ना उस गाने वाने सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं हा हा हा क्या गाना है क्या सिंगर है, ठीक है ना, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये सिंगर हकलाता है.
1: जी मैं
0: मेरे मेरी बात को पूरा बहुत सारे सिंगर ऐसे आपकी जिंदगी में भी आपने देखे होंगे, मैंने भी
1: मिलते रहते हैं
0: जो हकला रहे होते. ये आप क्योंकि उस्ताद हैं म्यूजिक टीचर हैं माशाल्लाह, तो ये हकलाने वाला आदमी गाते हुए क्यों नहीं हकलाता?
1: अच्छा ये मैंने किसी डॉक्टर से ना यूएसए में था
0: जी
1: तो इस तरह की बात छिड़ गई ना. अच्छा. तो मैंने किसी से पूछा तो वो बहुत आगे मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो माहिर नफ्सियात भी थे, वो
0: जी
1: नफ्सियात के भी डॉक्टर थे वो. उन्होंने कहा बचपन में अगर किसी को सही तवज्जो या कोई सदमा या कोई दुख या उसका बचपन में टेंशन या प्रेशर बड़ों का या फैमिली का होता है या कोई हादसा गुजरा हो,
0: ठीक है,
1: उसके असरात आपके तबीयत पर आते हैं बाद में, चाहे आप कोई बड़े एक्टर बन जाएं, आप चाहे शाहरुख खान बन जाए तो आप चाहे सिंगर बन जाएं, बड़े बड़े नाम हैं मैं जिनसे मिला हूं जिंदगी में ना, तो वो रुक के बात कर रहे थे तो मैं उनको देख रहा था. उस वक्त तो मुझे नहीं पता, अब मुझे पता चला कि वाकई में उन्होंने बड़ी स्ट्रगल के बाद वो मुकाम हासिल किया, बड़ा नाम बने. तो मेरा ख्याल है कि वो सही कह रहे थे. और जिंदगी आर्टिस्ट की ना उतार चढ़ाव से भरी हुई है. बड़ा आदमी बनना तो मुश्किल नहीं है, बड़ा इंसान और बड़ा आदमी बनना मुश्किल है कि इंसान भी बड़ा. अच्छा उनकी जिंदगी जो बड़े लेजेंड्स हैं या जितने भी एक्टर हैं सिंगर हैं शायर होंगे कुछ ना कुछ परेशानियों से गुजरते हुए, कुछ तो बड़े बहादुर होते हैं जो टॉप पे पहुंच के ठीक रहते हैं, कुछ के साथ पुरानी यादें हमेशा जुड़ी रहती हैं, कुछ के साथ ये होता है कि बोलने में उनकी शख्सियत में मतलब घबरा जाती
0: है, हकलाना
1: वो भी उसी में शामिल होता है कि कुर्सी पे बैठे कुर्सी गया. वो असल में बचपन से किसी ऐसी चीजों से गुजरे होते हैं कि जो उनके साथ सदमा होता है तो यहाँ कोई चीज उनके जहन
0: तो गाते हुए वो चीजें गायब हो जाती
1: है, वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं ना जब आप स्केल आपके पास बाजा है.
0: हाँ.
1: आप कोई भी चीज गा रहे हैं तो आपको एक हवा का एक प्रेशर खुदा ने ऐसा बना दिया जो ट्यून है, तो उस वक्त आप गा नहीं रहे आप उसको गुनगुना रहे हैं.
0: भाई मैं आपको एक
1: आप समझ रहे बात
0: में, हाँ मैं समझ
1: तो सुरों में आपने उसको डाल दिया.
0: मैं बड़ा हैरान हुआ था, हमारे एक जानने वाले हैं और वो लाहौर में होते हैं और वो भी उस्ताद टाइप के हैं.
1: जी जी उस्ताद.
0: तो वो ना बहुत हकलाते थे.
1: मैं
0: ये आज बताना चाहता हूँ इस तरीके से हकला रहे. तो एक दिन अचानक वो मैं उन्होंने उनकी एकेडमी भी है, आपकी एकेडमी से मुझे ये बात याद आई और एकेडमी से मुझे हकलाना याद आया. तो मैं लाहौर में था तो पता नहीं किसी काम से मैं उधर चला गया. तो मैंने बोला चलो एकेडमी में उनके पास मैं उनसे जाकर मिला, सिर्फ सलाम दुआ के लिए गया. नदीम साहब आगे ठीक है आप जी जी इतना हकलाते थे वो. तो फैटी है अब वो बैठे तो उनका कोई साथ में बंदा था तो उन्होंने बोला यार कुछ सुनाइए उस्ताद जी. जब वो गाने लगे तो मैं ऐसे हैरान अभी मैंने बोला भाई ये बंदा तो
1: एक इसका शागिर्द है वो भी ऐसे हकलाता है और गाता सही है.
0: ये माशाल्लाह से इस उम्र में उस्ताद भी है.
1: मेरे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं तो मैं कहता हूँ अहमद इनको जरा रियाज करवाओ.
0: यार क्या बात है यार क्या बात है. अच्छा जी वक्त बड़ा फुर करके उड़ गया. हमारे पास बिल्कुल चंद मिनट रह गए और मैं ये चाहूंगा कि इन चंद मिनट का भी भरपूर तरीके से फायदा उठाया जाए. और रानी हुसैन का मैसेज आया है जनाब, वो कह रही है बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह क्या बात है जनाब. और भाई हमारे अली साहब बड़े पॉपुलर हो रहे हैं. संजू का भी मैसेज मैं पढ़ लूं, आज का प्रोग्राम हमेशा यादगार रहेगा. नदीम तो सरापा. अच्छा मेरी तारीफ नहीं इस वक्त हमारे करम भाई ने अपना फेवरेट सॉन्ग मेरे नाम किया या नहीं किया. सर आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है या आपके सॉन्ग रखे मेरे पास. आपके देखिए सॉन्ग भी नहीं चला सके आपसे बातों में.
1: मुझे इतना पहले तो आपसे मिलने का इतना मजा आया कि बड़े सालों से बड़े महीनों से हम सोच रहे थे
0: बिल्कुल ऐसे ही
1: हो नहीं रही थी. चले अल्लाह ने किया कि मुलाकात होगी क्योंकि हमारा सिलसिला बुजुर्गों का आपस में मिलने का पर हमें मौका नहीं मिल रहा.
0: हमें
1: कभी आप मुझे इनवाइट करते हैं कभी मैं आपको कहता हूँ आप आ जाएं पर यहाँ आप अपने काम में یہاں مصروف آپ وہاں مصروف میں یہ کہ فون پہ رابطہ رہتا.
0: میں سر آپ کا سب سے پہلے کیونکہ وقت ایسا ہے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں سے وقت نکال کر آپ ہمارے ایف ایم 100 آئے اور اس کو رونق بخشی آپ نے دل کی گہرائیوں سے. دیکھیں ہمارے اپنے تعلقات اپنی جگہ پر ہیں لیکن جو آپ نے ایک آپ کا جو مقام ہے اس معاشرے میں اس اور جس طریقے سے آپ کو ایک سراہا جاتا ہے اور سب سے پہلے میں اس چیز کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ جس طریقے سے اپنے گھرانے کو لے کر چل رہے ہیں ایوری بڈی نوز اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملٹی ٹاسک کرتے ہیں کرم بھائی نہ صرف کہ کلاسیکل موسیقی میں بلکہ گیت غزل گائکی پاپ ایوری تھنگ ماشاء اللہ سے یہ کرم بھائی کا اپنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا کام ہے وہ میوزک کو آگے بڑھانا ہے. بے تحاشا اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اس وقت لیڈ ووکلسٹ بنے ہوئے ہیں آپ ان کے گانے بھی سن رہے ہیں جن کا نام کہا ہے تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اور ہماری بہت ساری نیک خواہشات ہیں ہمارے علی احمد صاحب کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اچانک دھماکہ کریں گے بہت خطرناک قسم کا اور میں
1: میرا ایک گانا تھا جو آپ نے مجھے چلایا ابھی پلے کیا تھا جب ہم بات کرتے میرے دل سے یوں دل اے آر وائی نے بنایا تھا وہ
0: میرے دل سے
1: ہاں مجھے کسی نے ٹاسک دیا تھا کہ گا کے دکھائیں
0: سر ہو جائے کچھ ہو جائے
1: اب میرا پلے کر کے ذرا دکھائیں اس کی شاعری بڑی ماڈرن تھی.
0: اچھا بھائی آپ ذرا یہ میوزک سنیے گا

0: वो असल में गाना जो है वो हमारे करम भाई से पूछना था कौन सा है। जी करम भाई, वो ये जो गाना है
1: मुझे
0: ये लास्ट में हम चलाएंगे, हाँ। आप इसका किस्सा सुना दें।
1: मैं स्टूडियो में कोई अपनी गजल रिकॉर्ड कर रहा था,
0: मुख्तसर सुनाइएगा क्योंकि वक्त
1: तो गजल गाते हुए उसने म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा, कहते ये गाना है चंद लाइन है आप गाएंगे। तो मैंने कहा यार मेरा ये इस तरह का मैं गाना गाता नहीं। कह रहा है यार आप मेरे ख्याल मुश्किल रहने दें। मैंने कहा चलो सुनाओ। जब उसने कहा तो मैंने उसने चलाया तो मैंने सुना, तो मैंने कहा ट्राई कर सकता हूँ। कहता है फिर गजल बाद में। मैंने कहा नहीं नहीं पहले गजल। कहता है नहीं पहले अब ये करोगे तो गजल। आधे घंटे में ही मैंने गाना गाया।
0: आधे घंटे
1: जी वो लिख लिख के दिए जा रहा था, मैं गाया जा रहा था।
0: वाह
1: ये मेलोडी है।
0: अच्छा भाई आपका सर दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया आपका।
0: थैंक यू वेरी मच कि आप आज हमारे स्टूडियो में आए। अली भाई मैं आपसे माजरत इस वजह से चाहूंगा कि आज मैंने आपको वक्त जरा थोड़ा सा कम दिया। उसकी वजह ये थी कि इतनी बड़ी शख्सियत मेरे साथ मौजूद थी, मेरा भी अपना दिल नहीं भरा, मेरा अपना दिल नहीं भरा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं अनकरीब आपको, क्योंकि वाले साहब तो आपके बाहर के टूर पे जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो इन बिटवीन अगर वक्त मिला तो आपके पास जब वक्त हुआ तो आप जरूर आइएगा, और वरना फिर करम भाई आ जाए बाहर से तो फिर उसके बाद देख लेंगे। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे शो में आए और उसको रौनक बख्शी। और जाते जाते करम अब्बास भाई का वही ट्रैक मैं आपको सुना रहा हूँ कि जो लिख लिख कर दिया जा रहा था और ये इम्पोर्टेंट पड़ रहा
1: है।
0: तो इसके साथ ही जनाब मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी कल रात 11 बजे से लेकर 1 बजे तक म्यूजिक ट्विस्टर में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
1: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Or Energy Saving No Frost, No Worries
0: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365 Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
4: Assalamu alaikum, Pakistan.
5: 1, 2, 1, 2, 3, hit it.
6: Everybody says,
7: Masti karne ka.
6: Everybody say joy.
8: Master in the hands.
6: Come into my world.
8: Come and join it.
7: So listen to Music Masti.
9: Music Masti.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Assalamu alaikum Karachi. आपके प्रेजेंटर महफूज हसन आपके साथ मैं नहीं कहता कहते हैं आप जब आते हैं महफूज 100% होते हैं आप महफूज आप नहीं कहते बल्कि कहता हूं मैं कि तुसी ते बड़े ही सोने हो दोस्तों लेकर आपके लिए वही खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका रहता है आपको बेताबी बेचैनी बेसब्री बेकरारी से इंतजार और आपके बेकरार मन को आता है करार जब आता है एतवार जिसे हम कहते हैं संडे और मिलकर मनाते हैं फंडे तो संडे आन पहुंचा है फंडे आन पहुंचा है हमारा आपका प्रोग्राम आन पहुंचा है जिसका हम सब मिलकर नाम लेते हैं एंड द प्रोग्राम नेम इज म्यूजिक मस्ती और महफूज म्यूजिक मस्ती और महफूज में आपको खुशामदीद कहते हैं वेलकम कहते हैं आप सभी का ठीक 5 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा इस साथ को यादगार शानदार खुशगवार आप सबने बनाना है अपने मैसेज के जरिए बनाना है फेसबुक के जरिए बनाना है और अगर कुछ ना सही तो खामोशी से सुन के इसको अपना बनाना है क्योंकि प्रोग्राम रिक्वेस्ट शो है फरमाइशी प्रोग्राम है हमारे पुराने दोस्त प्रोग्राम का फॉर्मेट अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन नए दोस्तों को बताना पड़ता है कि आप मुझे फरमाइश कर सकते हैं 3 से 4 तेज गानों की फास्ट राइज की और 4 से 5 सॉफ्ट मेलोडीज की चूंकि म्यूजिक मस्ती है और मस्ती जारी और सारी है तो अपने राइट मैसेज में जाइए कैचा लिखिए स्पेस भी अपना मैसेज टाइप कीजिए और लिख भेजिए हमें 366 पर इसके साथ साथ facebook.com/RJMahfooz पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बता सकते हैं कि आपकी फरमाइश क्या है प्रोग्राम में शामिल करेंगे हम आप ही की पसंद का सबसे पहला गाना हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे

0: put your hands up.
1: Gonna dance.
2: Come on, woman,
3: it's
2: party.
3: You're listening to Music Musti.
4: Music Musti.
5: जी आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। मस्ती जारी हुई सारी है। प्रोग्राम का रिफ्रेश ट्रैक आपको हमने सुना दिया है, यकीनन आपको गाना पसंद आया होगा और आपकी फरमाइश हमने पूरी कर दी है। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। तो जनाब आप हमसे फरमाइशें कर सकते हैं, ढेर सारी फरमाइशें कर सकते हैं। अपने राइट मैसेज में जाइए, कैचाए लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख भेजिए हमें 3636 पर। इसके साथ साथ facebook.com/ आज महफूज पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं और बता सकते हैं आपको कौन सा गाना सुनना है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम कम बोलें और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक प्ले करें, आपको ज्यादा से ज्यादा हम गाने सुनवाएं, आप करें चिल और कह उठें कि भाई क्या बात है। आपकी फरमाइश पर एक और खूबसूरत सा गाना, 3 से 4 हम फास्ट ट्रैक चलाते हैं, 4 से 5 सॉफ्ट मेलोडीज चलाते हैं। तो ये गाना आप सबके लिए है।

0: You are listening to Music Masti.
1: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
4: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.
0: You are listening. Music. Masti. Masti. Masti.
7: जी मेरे दोस्तों, आ चुके हैं वापस आप दोनों हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज. अच्छे अच्छे से गानों की आप फरमाइश कर रहे हैं और साथ साथ आप मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं और आप मुझे बता रहे हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है. जरूर बताइए. साथ साथ आप संडे को फंडे बनाने के लिए क्या कुछ करते हैं ये भी बताइए. आपके मैसेजेस हम पढ़ेंगे और उसके बाद आपके लिए अच्छा सा गाना भी प्ले करेंगे. इमरान हमें मैसेज करें, सलाम करें, वालेकुम अस्सलाम, शो इज गुड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. साबरा में मैसेज करिए, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है. एहतशाम मैसेज करें, एहतशाम बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. जहाजेब हमें मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम. सुल्तान हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. अमजद ने हमें मैसेज किया, थैंक यू. असमा फरीद हमें मैसेज करिए, बहुत बहुत शुक्रिया. इसके अलावा शाजिया हमें मैसेज करिए, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. समीरा ने मैसेज किया, समीरा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. इसके अलावा अंजुम हमें मैसेज करिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. और मसूद हमें मैसेज करें, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. हाँ, सबकी फरमाइश हमने नोट कर ली है, साथ साथ पूरी करते रहेंगे आपकी फरमाइश और ढेर सारी करेंगे बातें म्यूजिक मस्ती और महफूज में.

0: You are listening to Music Masti.
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: Like us on facebook.com/FM247365.
0: FM247365. You are listening. Music. Musti. Musti. Musti.

0: Everybody say joy.
1: Master in the house.
0: Come into my world.
1: Come and join it.
2: So listen to Music Must Be.
3: Music Must Be.
4: जी जनाब, आ चुके हैं वापस, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती है, मुझे कहते हैं महफूज। अच्छा, परसों क्या हुआ? परसों 9:15 बजे के करीब तेज बारिश शुरू हो गई। अच्छा, मैं समझा पूरे कराची में बारिश होगी, लेकिन पूरे कराची में नहीं हुई थी। तो जिस जगह मैं रहता हूँ वहां पर बहुत तेज बारिश हुई, कोई 9:15 बजे से लेकर 9:45 बजे तक तेज हवाओं के साथ और ठीक ठाक किस्म की बारिश के पूरा इलाका जो है जलथल हो गया और हमेशा की तरह स्विमिंग पूल बन गया। तो एक गली से दूसरी गली जाने के लिए बोट करनी पड़ रही है, या फिर अगर आप अच्छे तैराक हैं तो आप तैरते हुए चले जाएं, अच्छी स्विमिंग अगर आती हो। उसके बाद कल उसी वक्त, जी बिल्कुल उसी टाइम पर फिर बारिश शुरू हुई, लेकिन वो बारिश परसों जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी बारिश हुई और बहुत तेज हवाओं के साथ पेड़ हिल रहे थे और चीजें इधर से उधर उड़ रही थी, तो बड़ा खतरनाक माहौल हो गया था। तो किनारे पे खड़े होकर आप अपने घर के अंदर से बारिश को एंजॉय कर सकते थे, बाहर नहीं जा सकते थे, बहुत तेज हवा चल रही थी और दुबले पतले लोग तो खासतौर पर बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो हवा के दोष पर जाने लगते हैं। तो बहरहाल दो दिन से तकरीबन 9:15 बजे के बाद बारिश शुरू होती है और कोई आधा घंटा पौन घंटा रहती है, लेकिन पूरे कराची में नहीं हो रही। मैंने और दूसरे इलाकों में मालूम किया तो वहां पर नहीं हो रही है, लेकिन बहरहाल कराची में बारिश के बाद कुछ मजा ही अलग हो जाता है। सोंधी सोंधी सी मिट्टी की खुशबू आने लगती है और फिर अचानक से घरों से समोसे पकौड़ों की खुशबू आनी शुरू हो जाती है और फिर चाय उबलने की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जिस वक्त ये बारिश हुई थी उस वक्त तो खाने का टाइम था, डिनर टाइम था, इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं होगी, लेकिन शाम के वक्त अगर ऐसा होता है, दोपहर में होता है ना, तो हर घर से भीनी भीनी से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। आप अंदाजा लगाते हैं, वहाँ प्याज के पकौड़े बन रहे होंगे, अच्छा इधर जो है वो आलू वाले बन रहे होंगे, इधर फ्रेंच फ्राइज बन रहे होंगे, सारे स्नैक्स बन रहे होते हैं और चाय के उबाल की खुशबू से चाय भाई बड़े कड़क चूरो चाय बन रही होगी। तो बहरहाल बारिश है और बारिश रहमत है, लेकिन कराची शहर के लिए वो रहमत जब रोड पर आती है तो फिर सबके लिए जहमत बन जाती है और हमारा सिस्टम ऐसा जबरदस्त है कि हमें किसी स्विमिंग पूल में जाने की, किसी दरिया के किनारे जाने की, किसी समुद्र के किनारे जाने की जरूरत नहीं है। बारिश में आप शहर में रहते ही ये तमाम चीजें एंजॉय कर सकते हैं। बाकायदा बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं, स्विमिंग पूल बन जाता है और फिर ये पानी जो है ये फिर धूप से ही सूखता है, निकासी आपका कोई खास इंतजाम नहीं है। बहरहाल ये सारी चीजें हैं और आप बारिश को एंजॉय कीजिए, लेकिन एहतियात के साथ। अपने राइट मैसेज में जाइए कि चाय लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख भेजिए हमें 3666 पर। इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz।

जी मेरे दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। हम आपके लिए लेकर आते हैं बड़े जबरदस्त से गाने जो आपको चिल करते हैं, और यकीनन आप हमसे फरमाइश करते हैं, फरमाइश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मसूफियात में से हमारे लिए कुछ वक्त निकालते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंसान को अपने लिए वक्त जरूर निकालना चाहिए, 24 घंटे में कुछ ना कुछ वक्त अपने लिए जरूर निकालना चाहिए और उस वक्त को यूटिलाइज करना चाहिए। स्पेशली अपनी सेहत के हवाले से आपको बड़ा कंसर्न रहना चाहिए, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए आपको, और सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वॉक। अपनी जिंदगी में आपने वॉक को लाजमी बनाना है, चाहे आप मोटे हों चाहे आप दुबले हों, सबके लिए वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा अच्छी बात है वॉक करना सेहत के लिए। इससे जो आपका दिल होता है वो मजबूत होता है। अगर आप रोजाना वॉक करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर सही रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहता है, इसके साथ साथ जो आपका वजन है वो कंट्रोल में रहता है। बिना किसी जिम के अगर आप रोजाना 30 से 40 मिनट अगर वॉक करते हैं, कैलोरीज बर्न होती हैं तो वजन आपका कंट्रोल रहता है। इसके अलावा आपकी शुगर कंट्रोल रहती है, मेंटेन कर सकते हैं अपनी शुगर्स को। इसके अलावा अगर आप जोड़ों या हड्डियों का प्रॉब्लम है तो आपके जोड़ों हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, आपके पैरों में खून की गर्दिश बेहतर होती है, घुटनों का दर्द खत्म होता है। इसके साथ साथ आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छी नींद आती है, आपका स्ट्रेस कम होता है वॉक से। तो कोशिश करें, वॉक करें, आप हफ्ते में 5 दिन शुरू कर दें और 10 से 15 मिनट किया करें, फिर धीमे धीमे आप वक्त बढ़ाइए और 30 से 40 मिनट आप अगर रोजाना वॉक करते हैं तो आप अपने आप में बड़ी जबरदस्त तब्दीली पाएंगे, अपने मूड में अपनी सेहत के हवाले से बहुत अच्छी चेंजेस पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अपने राइट मैसेज में जाइए कि चाहे लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख दीजिए मैं 3666 पर। इसके साथ साथ facebook.com/RJ महफूज पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है।

0: It's time to turn up the volume and kick the boredom out the door. This is FM 100 Pakistan.
1: बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान और यह है कराची स्टूडियो. मुझे कहते हैं महफूज, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती. जी मेरे दोस्तों, आपके लिए आपके ही भेजे हुए मैसेजेस को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं. आपके कानों में आपके ही भेजे हुए मैसेजेस रस घोलेंगे. आपकी रिसीविंग में आपको दे दूंगी. जी आपके मैसेज मुझ तक पहुंच गए हैं. साथ हमें मैसेज कर रहे हैं, आपने कहा हैप्पी संडे, सलाम कहें, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. खालिद हमें मैसेज करिए, सलाम करिए, वालेकुम असलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. इसके अलावा असमा फरीद हमें मैसेज करिए, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. इसके अलावा महापारा हमें मैसेज करिए, वालेकुम असलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. लैला ने हमें मैसेज किया, लैला बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम असलाम. शहबाज गुल हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच. परवेज अली मैसेज कर रहे हैं, परवेज अली वालेकुम असलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. मोहम्मद अरसलान ने हमें मैसेज किया, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलाम, आपकी फरमाइश नोट कर लिए है. हसन अली हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. अदीला हमें मैसेज करिए, अदीला बहुत शुक्रिया. इसके अलावा अली रजा ने हमें मैसेज किया, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. और शिराज हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. समिया मलिक हमें मैसेज करिए, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. आप सबके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और साथ साथ अभी एक घंटा प्रोग्राम में और है. आखिरी का तेज गाना आपके लिए पेश करेंगे, लेकिन मैसेजेस जारी और सारी रहेंगे. इस गाने के बाद हमारी जो म्यूजिक है वो चेंज हो जाएगी, हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट हो जाएगा और आपकी फरमाइशें सॉफ्ट मेलोडीज की हो जाएंगी. इसके साथ साथ आप वही रहेंगे, मैं वही रहूंगा, तरीकाकार भी वही रहेगा कि आप अपने राइट मैसेज भेजेंगे, के एच आई लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे और लिख भेजेंगे हमें 3636 पर. इसके साथ साथ अगर आप डायरेक्ट फेसबुक पर मैसेज करना चाहते हैं तो facebook.com/ आजय महफूज लिखें, डायरेक्ट लिंक पर आ जाएं. और अगर आप फेसबुक पर लॉगिन हैं तो आप सर्च कीजिए आरजे महफूज, क्लिक करेंगे आपको मेरा पेज मिल जाएगा. वहां पर टाइमलाइन में मेरी तस्वीर के साथ मेरा स्टेटस लगा है. अब बताइए आकर के आपको कौन सा गाना सुनना है, साथ साथ किसी की बर्थडे है बताइए, किसकी बर्थडे है, विश करना है, डेडिकेट करना है, कुछ भी करना है, कोई अच्छी सी बात, कोटेशन, शायरी, बिल्कुल आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं. मैं यहीं पर मौजूद हूं, सारे पोर्टल्स आपके लिए खुले हुए हैं, चाहे वो 3636 हो, चाहे फेसबुक हो या फिर आपके दिल के रास्ते हों. प्रोग्राम में आखिरी तेज गाना आप सबके लिए मैं पेश करूंगा, उसके बाद हम आएंगे 4 बजे के बाद वापस. जाना कहीं नहीं है, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, मुझे कहते हैं महफूज.

0: You are listening to Music Masti.
1: FM 100's time check. It's 4 p.m. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
3: 31 saal. FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Pakistan.
0: You are listening. You are listening. Music. Masti. Masti. Masti.
4: जी मेरे दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती, मुझे कहते हैं महफूज। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा सॉफ्ट मेलोडीज में। तो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट हो चुका है और इसके साथ साथ सॉफ्ट सॉन्ग्स की आप फरमाइश करेंगे। तरीकाकार वही आसान वही पुराना, अपने राइट मैसेज में जाइए कि चाय लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3666 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं फेसबुक पर आरजे महफूज। इस तरह से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है। साथ साथ अपने दिल की बात कर सकते हैं, वो बात जो आप किसी से नहीं करते वो आप हमसे कर सकते हैं। FM 100 पाकिस्तान का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर खिदमत है। किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है, किसी को विश करनी है, कोई खूबसूरत सी बात, कोटेशन, शायरी, ये तमाम चीजें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे हम नुसरत फतेह अली खान साहब का ये खूबसूरत सा कलाम। सोचता हूं कि वो कितने मासूम हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते।

अच्छा, क्योंकि ये चेहरे से मासूम होते हैं इसलिए सब इन पर ट्रस्ट भी बहुत जल्दी कर लेते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है और सामने वाले की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। तो सोचता हूँ वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते ऐसे मासूम चेहरे जो अंदर से चालाक होते हैं उनसे बचना चाहिए। अजय जी अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख भेजिए 3666 पर। इसके साथ साथ facebook.com/RJ महफूज पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। शाम के 4:07 हो चुके हैं और मौसम कराची का जो है वो शाम को हमेशा अच्छा हो जाता है। वैसे कुछ दिनों से हब्स बहुत है, हवा भी चल रही है तेज लेकिन हब्स ज्यादा है, लेकिन शाम के बाद अच्छी तेज हवा चलने लगती है और कल भी 8-9 के बाद काफी तेज हवा थी, 9 के बाद तेज हवा के साथ अच्छी बारिश भी हुई है काफी जगहों पर कराची में। तो शाम 4 हैं, आपके हाथ में चाय का कप है, साथ स्नैक्स हैं और साथ FM 100 पाकिस्तान है, इतनी प्यारी सी मेलोडीज आप एंजॉय कर रहे हैं और करना भी चाहिए। हम आपके लिए हफ्ते में एक दिन शो करते हैं इतवार वाले दिन और आपकी ढेर सारी फरमाइशें हम तक पहुंच जाती हैं और हम भी कुछ आपके लिए प्ले करते हैं इस तरह से मजमूई तौर पर। म्यूजिक मस्ती और महफूज का एक फॉर्मेट है जो पूरा हो जाता है। हमारे ये 2 कैसे पता चलते हैं 3 से 5 हमें खुद नहीं पता चलते। जनाबे वाला एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपकी फरमाइश पर आपकी नजर करते हैं।

0: You are listening. You are listening. Music. Musti. Musti. Musti.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Khalis Ajza, Bharosemand Shifa, Schwabe Single Remedies, Kudrat ke behtareen Ajza se tayar ki gayi hain, kyunki aapki sehat isse kam ki haqdar nahi. Dr. Hamid General Homeo aur Schwabe Single Remedies, 75 saalon se Pakistan mein naslon ka bharosa.
3: Mujhe बराबर वाले अंकल के घर कभी नहीं जाना है। जब वो मुझे छूते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है।
4: बच्चों से जिंसी ज्यादती की कई निशानियां हैं, मसलन किसी खास जगह जाने का खौफ, बिलावजह चिड़चिड़ा होना, भूख में कमी या उदासी। इन निशानियों पर ध्यान दें, अपने बच्चों से खुलकर बात करें और इनकी बात पर यकीन करें। जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है, वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
7: Pure emotions, timeless classics, and soft melodies on FM 100 Pakistan.
0: You are listening. You are listening. Music. Musti. Musti.
8: Okay, my friends, you are listening to Music. Musti. And I say, Mehfooz. आपके मैसेजेस की तरफ हम मूव करेंगे। खुर्रम हमें मैसेज कर रहे हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। आप मुल्तान से हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अर्शद हमें सुन रहे हैं, अर्शद थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम। नादिया हमें सुन रही है, नादिया बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, एंड वालेकुम अस्सलाम, शो इज गुड। हफीजुल्लाह हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। खालिदा हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। सुमेरा हमें सुन रही है, सुमेरा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। कमर तनवीर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। इसके अलावा अदील अहमद सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। निगार कुरैशी ने सलाम कहा, वालेकुम अस्सलाम, ढेर सारी दुआएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद काशिफ हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आसमा फरीद हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। और साद अली हमें सुन रहे हैं, साद अली वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। दोस्तों अपने राइट मैसेज में जाइए, के एच आई लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3646 पर रवाना कीजिए। इसके साथ facebook.com/rjmehfooz।

0: listening. You are listening. Music. Masti. Masti. Masti.
1: क्या बात है जी, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। पहाड़ों की खूबसूरत वादियां दुनिया का सबसे पुरसुकून हिस्सा है, जहां शोर नहीं सिर्फ हवा की सरसाहट, दुनिया का बहता पानी और दूर कहीं बकरियों के गले में बंधी घंटियों की आवाज। क्या पुरसुकून माहौल और क्या खूबसूरत और सूदिंग माहौल। सुबह को पहाड़ों पर सुनहरी धूप, दोपहर को गहरे हरे खेत और शाम को नीले जामुनी बादल। एक ही दिन में मौसम 3 से 4 रंग बदल लेता है। शहर की तरह यहाँ खामोशी खाली नहीं होती है। चीर के दरख्तों से गुजरती हवा, बर्फ पिघल के ठंडा पानी और रात को सितारों भरा आसमान, सब कुछ दिल को नर्म कर देता है। ऐसी जगहों पर अगर इंसान चला जाए तो पुरसुकून हो जाए, बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात मिल जाए, स्ट्रेस आपका खत्म हो जाए, डिप्रेशन से आपको निजात मिल जाए, तमाम दवाएं जो हैं आप साइड पे फेंक दें और सिर्फ इलाके की खूबसूरती और इसके पुरसुकून होने से आप जो हैं पुरसुकून हो जाएंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, डिप्रेशन आपका खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की इसकी बेहतरीन मिसालें हैं, हुंजा है, स्कर्दू है, सवात है, चित्राल है, नीलम वैली, नारान, कागान, बहुत सारी जगहें जहां आप जा सकते हैं और पुरसुकून होकर आप वापस आ सकते हैं। जिंदगी बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही सूदिंग, बड़ी नर्म मुलायम सी और बहुत ही हल्के होकर आप वापस आते हैं जी। अपनी सारी परेशानियां और जितनी भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, वहीं पर आप फेंक कर आ जाते हैं। जनाब अपना राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3636 पर रवाना कीजिए। facebook.com/RJ महफूज पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं।

0: You are listening. Music. Musti.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: Dengue ek khatarnak bimari hai, जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365.
4: Pure emotions, timeless classics, and soft melodies on FM 100 Pakistan.
0: You are listening to Music Musti.

0: You are listening. You are listening. Music. Musti. Musti. Musti.
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/fm247365
0: fm247365. You are listening. You are listening. Music. Musti.
4: आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती। मुझे कहते हैं महफूज, आपके मैसेजेस हम पढ़ने लगे हैं। असद हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुनने और पसंद करने के लिए। मुनीर हमें सुन रहे हैं, मुनीर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा सुन रही है, हुमैरा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम अस्सलाम। फरमाइश हमें नोट कर ली है। सहर हमें सुन रही है, सहर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम। हारून अली हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी फरमाइश नोट कर ली है। रिजवान हमें सुन रहे हैं, रिजवान बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा है ग्रेट वॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज हमें सुन रही है, नाज शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइश नोट कर ली है। हामिद अली हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी भी फरमाइश हमने नोट कर ली है, पूरी करने की कोशिश करेंगे। इम्तियाज हमें सुन रहे हैं, इम्तियाज अहमद बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आप पहली मरतबा सुन रहे हैं, खुशामदीद। शब्बीर हमें सुन रहे हैं, शब्बीर वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। रेहान हमें सुन रहे हैं, रेहान थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा हमें सुन रही है, शाहिदा सुनने और पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा राहत हमें सुन रहे हैं, राहत बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। और अदनान हमें सुन रहे हैं, अदनान थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों आप सबकी पसंद पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, एक बहुत ही प्यारी सी आवाज, अपने जमाने की सुपर हिट वॉइस, जिन्हें वो मुकाम नहीं मिला जिसको वो डिजर्व करते थे। बहरहाल एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़े सिंगर, ए नय्यर।

0: You are listening.
1: You are listening.
0: Music. Masti. Masti. Masti.
2: जी मेरे दोस्तों, म्यूजिक मस्ती और महफूज सेकंड लास्ट सॉन्ग आपने सुन लिया और आखिरी का गाना आपके लिए हमने लाइनअप करके रखा हुआ है। लेकिन उससे पहले हम जरूर आपसे इजाजत भी चाहेंगे और आपसे पूछेंगे आपको शो कैसा लगा, बताइएगा जरूर कि आपको आज का शो कैसा लगा। जहां रहे खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को रखें खुश, बड़ों का करें अदब, छोटों से करें प्यार, अपने वतन का अपने परचम का करें एहतराम। और भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, महफूज को एफएम 100 पाकिस्तान को रखें अपनी दुआओं में जरूर जरूर जरूर जरूर याद। अगर आपके वालिदैन हयात हैं, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि दुनिया में यही आपकी जन्नत है और ऊपर जन्नत का वसीला। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे। जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आलमगीर की आवाज में हम शाम को नजर करेंगे, आपको नजर करेंगे और आपसे चाहेंगे इजाजत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़।

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
5: बंद करो ना ढक्कन.
6: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: This program is brought to you by
1: Phoenix Laga aur Bhula Ja, Phoenix Laga aur Bhula Ja.
0: And
2: Sweep Be Clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma, taki toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
3: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
0: And
4: Candyland, not the fun karte jao.
5: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान,
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
4: Sweep Be Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
0: And
5: Candyland, lots of fun karte jao.
6: Like us on Facebook.com/FM247365.
7: FM 247365.

0: ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL।
2: नाजरीन ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL।
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज प्लस डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: किसने कहा था पैसा?

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: 100 FM।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
0: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदेन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: And
4: Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
2: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है। और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक।

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है।

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye. Cancer. सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है. हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं. मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है. डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है. गामा नाइस एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है. और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है. जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है. यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है. अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ. क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by Phoenix Laga aur Bhool Ja, Phoenix Laga aur Bhool Ja. And
1: Sweep Be Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur apne toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And Candy Land, lots of
2: fun karte jao. Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है. हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग ना उम्मीद हो जाते हैं. मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है. डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है. गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है. और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है. जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है. यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है. अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ. क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
6: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, फास्ट डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
7: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: This program is brought to you by Tufaan Hai.
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: your location for maximum music. It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है. हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं. मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है. डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है. गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है. और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है. जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है. यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है. अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ. क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: किसने कहा था पैसे बचे?

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye. Cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din ek jung se kam nahi, ek aisi jung jisme bahut se log na umeed ho jate hain. Magar ab mayusi umeed mein badal rahi hai. Dow Comprehensive Cancer Center, hukumat e sindh ka wo kadam jahan cancer ka ilaj ab ek naye mayar par mumkin hai. Gamma knife advanced technology ke zariye brain tumor ka baghair surgery ke ilaj kiya jata hai jo umuman ek hi din mein mumkin hota hai aur iske zariye advanced stage brain tumors yani teesre aur chauthe stage ke sath multiple metastasis ka ilaj bhi mumkin hai. Jadid tarin MR Linac machine ki badolat ab cancer jism ke kisi bhi hisse mein chup nahi sakta. Dorane ilaj ise barah raast dekha ja sakta hai aur radiation ko uske reaction ke mutabik foran adjust kiya jata hai. Yahan pure Pakistan se aaye hue logon ka ilaj muft kiya jata hai. Ab cancer ka fauri ilaj khwab nahi haqeeqat ban chuka hai jo hukumat-e-Sindh aur chairman Bilawal Bhutto Zardari ke vision se mumkin hua, kyunki ye sirf ilaj nahi ummeed hai har us chehre ki jo jeena chahta hai. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب वहाँ HBL.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: This program is brought to you by Tufaan Hai.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
7: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
7: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 24/7/365

0: This program was brought to you by Tufaan Hai. FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग ना उम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: 100 FM शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
6: FM247365 FM 100,
7: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
8: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga
1: aur bhul ja. Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है. हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं. मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है. डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है. गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है. और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है. जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता. दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है. यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है. अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ. क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: This program is brought to you by
3: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए.
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
2: This program is brought to you by
3: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving। No Frost, No Worries।
4: Like us on facebook.com/FM247365
5: FM247365

0: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैस सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए।
7: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है, तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतल्लिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफातशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफातशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है, तो कानूनी वारिस मुतल्लिका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज़ और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज के کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم لیجیے۔
8: Back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM 100.
10: Come on.

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365 FM 247365

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.